दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है. थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू. हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.